मनोहर सबनीस और सहकारियों ने गाई ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक हिंदी भक्ति रचना। रचयिता हैं नारायण स्वामी। सुधा मल्होत्रा ने इसे गाया है और स्वरबद्ध किया है मधुकर गोळवलकर ने।

नारायण स्वामी की ये हिंदी भक्ति रचना अभी आपने सुनी सुधा मल्होत्रा के स्वर में। संगीतकार थे मधुकर गोलवलकर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं रविंद्र साठे और सहकारियों के स्वर में संत ज्ञानेश्वर महाराज की ये भक्ति रचना।

संत ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी रविंद्र साठे और सहकारियों के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत सेना महाराज ये भक्ति रचना, जिसे गाया है जयश्री सबनीस ने।

जय श्री स्वप्निस के स्वर में संत सेना महाराज की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं संत मीराबाई रचित ये हिंदी भक्ति रचना, जिसे गाया है श्री गिरीश ने।

संत मीराबाई रचित ये हिंदी भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जिसे गाया था श्री गिरीश ने। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था, जिसे आपने सुना रागम 27 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी हम आपको राग भैरव पर धमार सुनवाएंगे. कलाकार हैं अशोकाधर नंदी. आपके साथ पखवास पर हैं तापस दास. तो लीजिए प्रस्तुत है राग भैरव पर धमार. कलाकार हैं अशोकाधर नंदी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Dhamar in the Rag Bhairav. Our artist is Ashokadhar Nondi. Accompanying our artist on the Pahavaj is Taposh Das. Listen now to Dhamar in the Rag Bhairav. Our artist Ashokadhar Nondi.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भैरव पर धमार सुन रहे थे। कलाकार थी अशोका धरनंदी, आपके साथ पखवाज पर थे तापस दास। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अभी आपके सामने प्रस्तुत है राग बसंत मुखारी पर सरूद वादन। कलाकार हैं भवानी शंकर दास गुप्ता, आपके साथ तबले पर हैं पार्थ प्रतिम दास। तो लीजिए प्रस्तुत है राग बसंत मुखारी पर सरोद वादन, कलाकार हैं भवानी शंकर दास गुप्ता।
1: यू आर लिसनिंग टू धमार इन द राग भैरव। आवर आर्टिस्ट वॉज अशोका धौर नंदी। अकम्पनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द पखावज वॉज तापोष दास। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। Continuing the concert, we now present a sarod recital. Listen to a sarod recital in the rag Basant Mukhari. Our artist is Bhavani Shankar Das Gupta. Accompanying our artist on the tabla is Partho Pratim Das. Listen now to the sarod in the rag Basant Mukhari. Our artist Bhavani Shankar Das Gupta.

0: दुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बसंत मुखारी पर सरोदवादन सुन रहे थे। कलाकार थे भवानी शंकर दास गुप्ता, आपके साथ तबले पर थे पार्थ प्रतिम दास। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सरोद रिसाइटल इन द राग बसंत मुखारी। आवर आर्टिस्ट वॉज भवानी शंकर दास गुप्ता। Accompanying our artist on the tabla was Partho Pratim Das. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है संध्या काथवटे का उपशास्त्रीय गायन. संध्या काथवटे अपने गायन का प्रारंभ पीलू ठुमरी से कही है. बोल बरसन लागी बदरिया पिया बिन लागे नामोरा जिया. दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय संध्या काथवटे. शी प्रेजेंट्स पीलू ठुमरी. बोल बरसन लागी बदरिया पिया बिन लागे नामोरा जिया.

येथी पीलू ठुमरी। संध्या काथवटे अब प्रस्तुत करती है मिश्र भैरवी ठुमरी। बोल डारो ना डारो मोपे रंग सुनो सुनो। दैट वॉज पीलू ठुमरी। संध्या काथवटे नाउ प्रेजेंट्स मिश्र भैरवी ठुमरी। बोल डारो ना डारो मोपे रंग सुनो सुनो।

ये थी मिश्र भैरवी ठुमरी। आप सुन रहे हैं संध्या काथवटे का उपशास्त्रीय गायन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं नीलेश जाधव, सारंगी पर संगति कर रहे हैं उस्ताद फारूक लतीफ और हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं विनोद पड़गे। अपना गायन जारी रखते हुए संध्या काथवटे अब प्रस्तुत करती है मिश्र खमाश ठुमरी, बोल बाली उमरिया लरकैया। You are listening to light classical vocal recital by Sandhya Kathavte. She is accompanied on tabla by Nilesh Jadhav, on sarangi by Ustad Farooq Latif and on harmonium by Vinod Padge. Continuing her light classical vocal recital, Sandhya Kathavte now presents Mishra Khamash Thumri, Bol Bali Umariya Larkaiya.

थी मिश्र खमाज ठुमरी। संध्या का थवटे अब प्रस्तुत करती है किरवाणी ठुमरी, बोल तुम बिन मोरा जिया नहीं लगे। दैट वॉज मिश्र खमाज ठुमरी। संध्या का थवटे नाउ प्रेजेंट्स किरवाणी ठुमरी, बोल तुम बिन मोरा जिया नहीं लागे।

ये थी किरवाणी ठुमरी। आप सुन रहे थे संध्या काथौटे का उपशास्त्रीय गायन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे नीलेश जाधव, सारंगी पर संगति कर रहे थे उस्ताद फारूक लतीफ और हारमोनियम पर संगति कर रहे थे विनोद पड़गे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। इट वॉज किरवाणी ठुमरी। यू आर लिसनिंग टू लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय संध्या काथौटे। शी वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय नीलेश जाधव, ऑन सारंगी बाय उस्ताद फारूक लतीफ एंड ऑन हारमोनियम बाय विनोद पड़गे। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीटीएच चैनल। एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है, प्रस्तुत है।

0: विदुषी शन्नो खुराना का गाया राग चंद्रकौंस विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं घनश्याम आए, और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं हरि हरि जपत नाम तेरो। तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर रहमान कुरैशी ने।
1: दिस इज अ रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल जनरेशन इन राग चंद्रकौंस बाय विदुषी शन्नो खुराना। द विलंबित गत इज सेट टू एक ताल, द वर्ड्स आर घनश्याम आए, एंड ध्रुत गत इज सेट टू तीन ताल, द वर्ड्स आर हरि हरि जपत नाम तेरो। He is accompanied by Akhtar Hasan on the tabla, on sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami, and on harmonium by Rehman Qureshi.

0: अभी आप विदुषी शन्नो खुराना का गाया राग चंद्रकौस सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए राग सावनी बिहाग। झपताल के बोल हैं जाने अकल सब, और तीन ताल मुनिबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं नाद भेद अपरंपार। तबले पर आपकी संगति की है अख्तर हसन ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने, और हारमोनियम पर रहमान कुरैशी ने।
1: You were listening to a vocal rendition in Raag Chandrakaunts by Vidushi Shanno Khurana. Now listen to a Raag Savni Bihag. The words of Jhaptal are Jane Akal Sab and the words of Drut Rachna set to Teen Tal are Naad Bed Aparampar. He is accompanied by Akhtar Hasan on the tabla, on sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami and on harmonium by Rehman Qureshi.

0: अभी आप विदुषी शन्नो खुराना का गाया राग सावनी बिहाग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी अख्तर हसन ने, सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने और हारमोनियम पर रहमान कुरैशी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to a vocal rendition in Raag Savani Bihag by Vidushi Shanno Khurana. He is accompanied by Akhtar Hasan on the tabla and on Sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami and on harmonium by Rehman Qureshi. This program is a presentation of All India Radio, Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बहाउद्दीन डागर का रुद्र वीणा वादन। प्रस्तुत है राग जौनपुरी, इसमें आलाप और चौताल में निबद्धक गत प्रस्तुत है। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट रुद्र वीणा रिसाइटल बाय बहाउद्दीन डागर। ही प्रेजेंट्स राग जौनपुरी इन विच ही प्लेज आलाप एंड गत सेट टू चौताल।

ये था राग मालकोंस। आप सुन रहे थे बहाउद्दीन डागर से रुद्रवीणा वादन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे थे संजय आगले। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग मालकोंस। यू वेर लिसनिंग टू रुद्रवीणा रिसाइटल बाय बहाउद्दीन डागर। He was accompanied on Pakhwaj by Sanjay Agle. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है राग माल कौस पर शहनाई वादन. कलाकार हैं गौहर अली खान एंड पार्टी. आपके साथ तबले पर हैं तरुण रॉय.
2: दिस इवनिंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन फर्स्ट टू अ शहनाई रिसाइटल इन द राग माल कौस. Our artist this evening is Gauhar Ali Khan and Party. Accompanying our artist on the tabla is Tarun Roy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग हंस ध्वनि पर शहनाई वादन सुन रहे थे। कलाकार थे गौहर अली खान एंड पार्टी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिस्निंग टू अ शहनाई रिसाइटल इन द राग हंस ध्वनि। आवर आर्टिस्ट वॉज गौहर अली खान एंड पार्टी। Accompanying our artist on the tabla was Tarun Roy. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्री रामाश्रय झा का ख्याल गायन. आइए इनसे सुनते हैं राग देवगिरी विलावल. विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिनके बोल हैं ए बना ब्याहन आया, और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है जिनके बोल हैं दिन गिन दे रे बमना. तबला संगत की है पंकज कुमार श्रीवास्तव ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने.

ये था राग अरुण मल्हार। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं राग झांझ मल्हार। विलंबित रचना मध्यलय तीन ताल में निबद्ध हैं, जिनके बोल हैं पठाई न पतिया पियरवा। कलाकार हैं श्री रामेश्वर झा। आपके साथ तबले पर संगत की है पंकज कुमार श्रीवास्तव ने और हारमोनियम पर शमशाद अहमद खान ने।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामाश्रय झा का गाया राग झांझ मल्हार। आपके साथ तबले पर संगत की थी पंकज कुमार श्रीवास्तव ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने। रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खां. राग है नट भैरव जिसमें आप सुनेंगे विलंबित और द्रुतगत दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर इस्माइल दद्दू खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां. द रेंडिशन कमेंसेस विद द राग नट भैरव. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला.

अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खां से राग हेमवती। आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और एक गत जो रूपक ताल में निबद्ध है। तबला संगत की है इस्माइल दद्दू खां ने। नाउ लिसन टू राग हेमवती बाय उस्ताद अमजद अली खां।

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं उस्ताद अमजद अली खान। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे उस्ताद अमजद अली खान से पीलू धुन, जो अद्दा ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खान, यू विल लिसन पीलू धुन।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे उस्ताद अमजद अली खां। संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय उस्ताद अमजद अली खां। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय इस्माइल दद्दू खां ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

0: This is Ragam 24/7 DH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खाने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now have for you a santoor recital presented by Abhay Rustam Sopore. He first presents Rag Vibhas. He is accompanied on the tabla by Ustad Akram Khan.

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग विभास सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अकरम खान ने। और लीजिए अब सुनिए राग भूपेश्वरी। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अकरम खान ने।
1: You just heard राग विभास। Continuing with his संतूर recital, अभय रुस्तम सोपोरी now presents राग भूपेश्वरी।

0: अभी आप अभय रुस्तम सोपोरी का संतूर पर बजाया राग भूपेश्वरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग भूपेश्वरी वी कम टू द एंड ऑफ द संतूर रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय अभय रुस्तम सोपोरी। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय उस्ताद अक्रम खान। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी संगीत. हिंदुस्तानी संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम. आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भजन और श्यामा संगीत. आज के कलाकार हैं आनंदिता सरकार, अनिरुद्ध नाथ, अनुराधा चक्रवर्ती और तिमिर घोष. कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मीरा के इस भजन से जिसे गाया है आनंदिता सरकार ने. तो आइए सुनते हैं मीरा का ये भजन, कलाकार आनंदिता सरकार.
2: This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. This evening we present devotional songs. We begin the program with a Meera Bhajan. Our artist is Anindita Sarkar.

0: अभी आप मीरा का ये भजन सुन रहे थे। आज की कलाकार थी आनंदिता सरकार। आइए अब आपको सुनवाते हैं मीरा का ही एक और भजन। कलाकार हैं अनिरुद्ध नाथ। तो आइए सुनते हैं मीरा का ये भजन अनिरुद्ध नाथ की आवाज में।
1: यू वर लिसनिंग टू मीरा भजन। आवर आर्टिस्ट वॉज आनंदिता सरकार। This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Listen now to a Meera Bhajan by our artist Aniruddha Nath.

0: लीजिए प्रस्तुत है एक और भजन, कलाकार हैं अनुराधा चक्रवर्ती।
1: यू आर लिसनिंग टू मीरा भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनिरुद्ध नाथ। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती।

0: हिंदुस्तानी संगीत के तहत अभी आप भक्ति संगीत के कार्यक्रम में भजन सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्यामा संगीत। आज के कलाकार हैं तिमिर घोष।
1: यू आर लिसनिंग टू भजन बाय आवर आर्टिस्ट अनुराधा चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत। Listen now to Shyama Sangeet by our artist Timir Ghosh.